0: माता गुजरी की थां सी, हुण उत्थे नहीं मिलदी। बूढ़े विच माता गुजरी की याद समाज चाहिए ते पिछे गुरु के लाला दी, ते उत्थे जदों किते लंघिया ते मैं उस दरवाजे नूं देख के आपो अपनी सोच हुंदी है माता गुजरी वाली थां ते खलो के कहना नहीं मां जिन्हें बनाई तेरी यादगार बूहे विच तां ही बनाई, मां पहरा दिंदी है मेरे लाला नूं तत्ती वाह ना लग जाए, मां पहरा दिंदी है। इसे करके प्रोफेसर मोहन सिंह ने एक शब्द किया कि मां वर्गा कनशावां बूटा मेनू नजर ना आए, जिस तो लैके छां उधारी रब ने सुर बनाए, बाकी कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुखियां कमलां दे ऐ पर फुलां दे कमलाया ए बूटा सुख जाए। दुनिया दे बूटे जड़ सुखदे ने ते तां सुखदा है, पर मां बूटे दा फल किते टुट जाए पुत्तर धी चला जाए ते कमला जांदा है। वाहिगुरु मेहर करे सानू गुरमत विच रह के सिखण दी जांच अपने विषय वल तुरां फिर तुरीए। सारिया विचों दी जोत है एक संत क्यों दूजा साध क्यों एक साखच क्यों दूजा मनमुख क्यों। प्यारे पानी की बूंद पानी विच मिलेगी पानी बन जाएगी, सिप्पी विच मिलेगी मोती बन जाएगी, केले विच डिगेगी कपूर बनेगी, सप दे मुंह विच डुगेगी ते जहर बनेगी। जोत तो सारिया विच परमात्मा दी है, पर जिओ जी तेरी जिंदगी विच सोबत बनेगी ओ जाई तेरा जीवन बन जाए। भाई साहब ने शब्द वरते ने के सम सर वर्ष है स्वांत बूंद जो सबनी थाई, जल अंदर जल होए मिला धरती तो उपाई, किरख बिरख रस कस करे फल फूल सहाई, केले विच कपूर होए शीतल सुखदाई, बिशियर दे मुंह काल कूट चितवे गुरियाई, आपे आप वरतदा सत संग सुभाई। सारिया विच आप रहिंदा है पर जिओ जी सोबत आपां करन लग पैंदे आ गुरमुखो ओहो जिहा बंदे दा जीवन बन जांदा है। आओ जे उस जोत दे दीदार करने ने सारिया विच देखने अपने अंदर नूं धोण दा यतन करिए। गुरु ग्रंथ साहिब विच आसा राग विच इक तुक हुंदी है एक वस्त बूझै तू होवै पाक, एक गल तेनू समझ पै जाए तू पवित्र बन जाएगा, बिन बूझे तू सदा न पाक। जे तू ना समझिया जितने मर्जी अदर दलेलां लाई पर चेते रखी तू नापाक दर ते प्रश्टिया होया, तेरे कोल गंदगी है। वो एक वस्तु है केवल परमात्मा दा नाम। जे असी सोचिए भी असी शरीरक तौर ते बहुत पाक हाँ बड़े पवित्र ते गुरु साहिब ने देखा कहदा तू पवित्र भलिया, इन्हें कीमती फुल सुगंधी देने वाले तेरे शरीर की संगत करके वह भी बदबू मार दे। जिन्हां नूं तू 36 प्रकार के भोजन कहना हिंदू मिथियोलॉजी सेव से मानदी है, तेरा शरीर कहदा पवित्र होए तेरे शरीर की संगत करके तो वह भी गंदगी बन जाते। असी पढ़ते नहीं अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून, पंजवां पाया फिरता होवा पाक पवित्र, पापी सौ तन कटिया थुका पईया पित, जित मुख नाम ना उचरे बिन नामे रस खाए, नानक एवें जानिए तित मुख थुका पाए। किन्ना कु शरीर पवित्र है, कह लगे कर्पूर पोप सुगंधा, परस मनुख्या दे मलिनत मचा रुदर दुर्गंधा, नानक अत कर बेण अज्ञानो। जे तू अंदर नु पाक करना है कर्म कांड पाक नहीं करनगे, पता तेरे अंदर नु पवित्र किन्ने करना, एक वस्त बुझ है वो एक वस्त है प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, एक वस्त बुझ है वो एक वस्त है हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, एक वस्त बुझ है वो एक वस्त है के भरिय मत पापा कै संग ओ धोपै नामै कै रंग, वो एक वस्त है जिन्हों बाणी विच हजूर ने कहा है कह लगे वो नाम है जरा तेरे अंदर की मैल धोवेगा। तो जे आप बाहर के कर्म कांडता किते अंदर वाले दिल वाल झाकी ना मारी प्यारो अपने जोतना चकी से दूजिया किते देखा है वो सर्वव्यापक सुभा साढ़े तां बन गए ने, एक तो पूर्वलियां जूना दूजे साढ़े हुण जिथे जिथे असी बहिने जिहड़ी सूरत साढ़े विच आउंदी है ओहो जिहा साडा जीवन बन जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा परमात्मा सारिया विच है, प्रमाण मैं भी देगा सारिया विच, मैं तो एको बेनती करांगा जिहड़ा सारिया विच मैनू मेरे विच दिसण लग पवे, है सारिया विच पर जे मैनू अपने भी दिसेगा मैं सारिया विच देख सकांगा। अज इन्नियां कु बेनतियां सिर प्रवान करियो, धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू मेहर करे होईयां बेनत भुलां, साध संगत आप कृपा करके बख्श देणियां। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਹਿਣ ਹੋਦੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
1: ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਸਤਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ।

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

नहीं रह सकी, फिर दोबारे टूट गई। उन्होंने कट्ठे होके राम रौनी हजे आप कल ही बनाई है, ये रामगढ़ किला जिदे तो नाम रामगढ़िया बनिया जस्सा सिंह का नाम। रौनी का अर्थ हुंदा चार दीवारी। राम रौनी अमृतसर साहब तो शहीदां दे वाले पासे रामसर वाले पासे एक मील दे उत्ते 2 किलोमीटर की दूरी उत्ते बनी सी। इस नूं आके उन्होंने घेरा पा लिया। जदों इहनूं आके घेरा पाया ते घेरा कई दिन चल गया। अंदर गुरु के सिखां दा प्रबंध इन्ना नहीं सी ते जिहदे विचों गुरु के सिख शहीद होण लग पए। अंदर करीब कोई भुख दे कारण, कई बारी उन्हें हथियारां दे कारण, कई बारी जंग दे कारण, उदो सिख जिहड़े सन ना ओह सोच के जाया करदे सन वी असीं 5 सिख बाहर निकल लगे हैं ते 5 विचों लड़ांगे, कुछ ना कुछ मरांगे ते 5 विचों 2-3 जिहड़े बाकी बचणगे, 1-2 बाकी बचणगे, कुछ राशन लैके अंदर आ जाणगे। जे उस वेले 5 विचों 3 भी शहीद हो गए ते बाकी 2 राशन लैके आ गए, अंदरलियां नूं जिंदगी मिल जाएगी, ये सोच के जाया करदे सन। ते उस वेले गुरु के सिखां दे उत्ते इस तरह कहर वरतण लग पिया। तां उदों देखो सिक्खी दा बीज अंदर होवे, जस्सा सिंह अदीना बेग दे नाल घेरा पाई बैठा है, हालांकि उन्हूं पता लग्या भी अंदर इवें गुरु की सिक्खी दा कांड हो रहा है। उस वेले जस्सा सिंह दे अंदर दर्द जागिया, उन्हें अपने वालों एक चिट्ठी लिख के ते तीर विच परो के उन्हें एक चिट्ठी अंदर भेजी तीर दे राही। अंदर खालसे ने उह चिट्ठी पढ़ी गुरु के सिखां ने, भई जस्सा सिंह यह चाहुंदा है भई जे मैनूं पंथ अपने विच शामिल कर लवे तां इस वेले मैं तुहाडी मदद करन लई तैयार हां, मेरे कोलों अपने भरावां दा खून नहीं जे हुंदा, मेरे कोलों अपने भरावां ते तलवार नहीं चलदी, मेरे कोलों अपने भरावां दा खून डुलदा वेखिया नहीं जे जांदा। अज किते सिक्खी विच भावना पैदा हो जाए, अज जिहड़ा सिख सिख नूं मारन ते तुलिया होया है ते किवें करियो जे अज शायद जस्सा सिंह दे जीवन विचों आपां इक उदाहरण अपने जीवन विच धारण करिए, शायद अज भी उजड़ी जांदी सिक्खी जिहड़ी है ना बहुती लहरां बहरां वाली हो जाएगी ते सिख दा दुश्मन सिख ना बने। जस्सा सिंह ने एक चिट्ठी अंदर भेजी, पंथ ने उहदे ते विचार कीती ते पंथ ने वापसी ले ली जस्सा सिंह दी। ते उस वेले जस्सा सिंह ने अदीना बेग ते उना दी फौज दे विरुद्ध होके लड़े ते आखिर उन्होंने भाजना पाईया। गुरु के सिख फिर दोबारे इथों निकले ते आनंदपुर साहब वाले पासे चले गए। ए गल वखरी है, हुण आपां दूजा पासा लईए। उदों जदों इह सारा कुछ वरतिया 1748 विच अहमद शाह अब्दाली मार खा के गया, 1749 विच उहदे कोल फिर ना रह होया, कुछ ही महीनिया तो बाद वह फिर दोबारे आ गया। फिर दोबारे आया ते उन्हें आके इस वेले कोशिश की जंग लड़न की। मीर मन्नू लाहौर का सूबेदार है, इन्हें दिल्ली तो मदद लेनी चाहिए। उस वेले दिल्ली विच हाकम है सफदर जंग क्षमा करियो, ते उस वेले दिल्ली का हाकम वह है ते उहदे कोलों उन्हें लेनी चाहिए मदद, पर वह दिलों एक दूजे नाल कौड़े सन ते उन्हें वक्त ना मदद ना भेजी। ते आखिर यह सोधरे दे मैदान विच मीर मन्नू हार गया ते अहमद शाह अब्दाली जित गया। उन्हें हथियार छुट दिते ते 14 लाख रुपये का लेन देन करन दे कारण उन्हें मीर मन्नू नूं बख्श दिता, फिर दोबारे लाहौर का सूबेदार बनाता। वक्त फिर गुजरिया, हुण मीर मन्नू उदों फिर बहुत कहर करन लग पिया। उदों दे इह भाणे ने जिहड़े दोए टकरा रहे ने, मैं बेनती करा इन्हां दोनों का जुल्म कोई छोटा नहीं है। दोनों दे लई पंजाब दी धरती 2 कहावतां कहिंदी है, दोवें कहावतां आपां बहुत बारी सुनियां ने। लोक इह मन्नण लग पए सन खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा, हरेक साल आके लुट्टण लग पिया। यह 1748 तो शुरू होया, 1770 तक इन्हें 11 हमले करने ने। हजे 2 का जिक्र दस ने तुहाडे नाल सांझा कीता, हुणे तीजे का जिक्र करना है। इन्हें भी एक कहावत हिंदुस्तान की धरती ते लोगों की जुबान ते लै आंदी, खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा, ए ओयो अहमद शाह अब्दाली है। दूजी गल

0: उस वक्त महाराज जी ने इनू धीरज दिता, थापड़ा दिता, अपने कोल ही रख लिया नाल ही।
1: जिस को नित दर्शन अबलाखा,
0: जिन्हों हर रोज सैदा बेग नू एक दर्शना दी अबलाखा ही सी, होर कोई इच्छा नहीं सी।
1: मुगल प्रमोद कलो और पायो,
0: मुगल ने भाव सैदा बेग ने मन दे अंदर बहुत खुशी महसूस की।
1: जीत कडेरा सकल लुटायो,
0: जिन्ना कडेरा सी पैसा धन दौलत पदार्थ वो सारा ही लुटा दिता, अपनिया फौजा नू ही दे दिता।
1: सब किछ त्याग रहे प्रभ पास,
0: सारा कुछ छड़ दिता, कहण लग्या भई मैनू अपनी मंजिल मिल गई है, इस करके मैं हूं गुरां दे कोल ही रहांगा।
1: वे परलोक सुख लागी आसा,
0: हुण मैनू ये आसा लागी मन च कि मैनू हुण गुरां दे कोल आके कोई फिक्र नहीं है, इस लोक दा सुख भी मिलेगा, परलोक दा सुख मिलेगा।
1: सगल तुरक गए जब दूर, उतरे डेरे बिखे हजूर।
0: जदों सारे तुरक चले गए बहुत दूर, लंघ गईयां फौजां उन्हां दीयां, तां महाराज सच्चे पातशाह ने जिथे अपना डेरा कीता होया सी उथे जाके उतरे।
1: खान पान दाना तिन पाए, बसे निसा पूरब की थाए।
0: घोड़ियां नूं भी खाना दाना पाया है और फौजां ने भी लंगर छकिया है, अते रात नूं विराजमान होए।
1: भई प्रभात कूच कर देन,
0: अमृत वेल दा नितनेम करके उस तो बाद सूरज दे चढ़ाओ ना

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों विपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ, प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब। अचानक तुरकां ने हमला किया, सहिदा बेग छरनी पिया, श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया, अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी को 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़ियां दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल, अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरक सुबत जैसा जिस भाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो, ये साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है कवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकता वो इलाके दे विच बदनाम होवे। जबर खां पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जा के बड़े आराम दे नाल उस नूं पकड़ लिया।
0: जिनी को इक तुरंग चढ़ायो, ए कुरीत फल सब नूं सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं एवें नहीं लै के जा रहे, इहने आह कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण चंगियां निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लै आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके लै आवो
0: सोने दे सोहने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके लै आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्जिया थोड़ा जिहा, एकदम घोड़े ने छाल जो मारी। सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है। इस

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी नहीं डरते। यह तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्हों के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम।
0: इन्होंने कई बारी अपने नाल जंग कीता है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने, यह सारे इलाके कई बारी इन्होंने उजाड़ दिते हैं।
1: मुखी सेना के मरे हमारे आद केसरी चंद जुझारे।
0: ये केसरी चंद तो आद लैके होर जिन्हें योधे सन सारे साडे जरनैल राजे महाराजे, ये इन्होंने बहुत सारे जंग दे

0: हे सच्चे पातशाह, हे महाराज, यह तुहाडा ही पंथ है। हुण पंथ की कटिया हो रही है, भाव कट वड हो रही है, पंथ हुण हार रहा है। पहला नहीं सी दिखिया महाराज, कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए। असी यह छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की, जे छत्र छाया छड दीए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन।
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई, कौन खता इनके घर पाए।
0: महाराज केड़ी गलती हो गई सब तो, क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे, क्यों नहीं साडी मदद करदे।
1: जेकर सिंह है अवगनियारे, तौ आपके जगत उचारे।
0: जे सिंह अवगनियारे ने तां भी जग ने तां होर कुछ नहीं कहना, जग तां फिर भी यही कहेगा कि कलगियां वाले दे सारे सिंह ने।
1: इत्यादक बोलत समदाए, मिले आन को हैन तवाए।
0: तो इत्यादक सारे बोलते ने, तो घोड़िया नूं भजाउंदे ने कि महाराज नूं मिलिए।
1: करत पुकार सो आए कनेरी, हित हेरन गुर ग्रीव ना फेरे।
0: भजाउंदे ने घोड़े आपो अपने मगर मगर, महाराज तेज घोड़ा भजा रहे ने, पर सतगुरु जी ने पिछे नूं अपना मुख कीता ही नहीं है। कहंदे मैं नहीं रुकना हुण।
1: कहे बहुत प्रभ छिन पर थिरो, लड़त पंथ अवलोकन करो।
0: बड़ा कहा महाराज, एक छिन लई टिक जाओ, सिंघां नूं देख लो, सिंह किवें जंग कर रहे ने, घिर गए हन।
1: कह जब रहे खरे मैं होए, नौरंग सिंह मिलियो प्रभ जोए।
0: जदों बहुत कहा महाराज रुके ना, एक भाई नौरंग सिंह सीगा।

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्था दे च शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। या गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साडी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे चा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा लई, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरु ने अपना तनुख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने, तोमर ते शेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने, ओ सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچھا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी
1: पंथ खालसा हो जस थोरा
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच
1: पयत कहो कहो को टोरा
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है कोई सिंग।

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागै।
0: होर जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मनदे ही नहीं कि गुरु घर नूं नहीं मनदे ऐवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलीए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारिआं नाल ही वरतणा, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमय सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिवें आम तौर ते सतगुरु सभा लगा के बैठदे सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी दे वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां दी जनरल नॉलेज देखदे ने किन्नी जाए किन्ना कि इहनां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच इह गल इस तरह नहीं है इह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल दसणा नूं करिए पवित्र गद के आ

0: फिर जो जूठा पानी है वरतों नहीं करनी, एक नगुरे का जूठा नहीं पीना, यदा भी पवित्र मनिया जाता है।
1: सवान सुपच जूठा अलप कत बंदा जल असित,
0: यह जरा जल असित असित हों अपवित्र मैड़ा पानी। सो ये जड़े पानी ने जिमें कोई समान है, हूं कूकर ने पानी जूठा कर दिता, कई लोग कहने चलो यदा कहला जूठा हों आप पानी पी लें, महाराज कहने ऐसा पानी कदे भी नहीं पीना कूकर आदक का जूठा। एक वो बंदे जड़े अपवित्रता का काम करते हो, खास करके इन्होंने हूं अमृत छकया होया बंदे का, तो बंदे अपवित्रते वाले बहुत काम करते, ऐसे लोग गंदगी आदक का काम भी करते हैं, फिर उत्थे तो अपनी पवित्रता नूं भंग नहीं ना होण देना। इस करके महाराज ने कहा देखो भाई अपवित्र पुरशां दे नाल पानी पीना, उन्हां नाल बैठ के रोटी खानी, ये माड़ियां गल्लां ने। बाकी जिहड़ा थोड़ा जिहा पानी खड़ा होवे उत्थों भी नहीं पीना पानी, क्योंकि पुराने ग्रंथां च लिखिया सवा मन तो वध पानी जिथे खड़ा वो पानी सुच्चा मन्निया जांदा। बाकी थोड़ा पानी जिथे खड़ा होवे, क्यों हुण तां टैंकियां टूटियां ट्यूबवैल नलके बहुत ने, यह पहला नहीं सी हुंदा, पहला किते ही खूह हुंदा सी जां लोक आम तौर ते छप्पड़ां च नहाउंदे सी, ये खड़े हुए पानी च नहाउणा उत्थे करके, इस करके मना करदे सी महाराज। घट बंदा घड़े विच देर दा पिया होया पानी जिहड़ा उत्तों ढकिया होया वह मुश्क मार जांदा, किरम पै जांदे ने, वह पानी नहीं पीना, मैला पानी नहीं पीना। इउं पानी भी ध्यान नाल पानी पीण तों नहीं रोकिया, पर कहिंदे पहलां पानी देख तां लओ, जे पानी तुसीं देखोगे नहीं ते पानी है कैसा। इस करके भाई पानी भी बड़े
1: बजुर्ग,
2: इस करके सच्चे पातशाह कहने ये जिहड़ियां सारियां चीजां ने ना ये अयोग ने, क्योंकि वेदां पुराणां विच भी कहा है कि जिहड़ा बंदा शंकर वर्णिया है, मलीन है, मैला है, तंबाकू की वरतों करदा है, शराब की वरतों करदा है, मीट आंडे आदक की वरतों करदा है, माड़ियां चीजा सारिया जिहड़ा बंदा खाई जांदा है।
1: श्रोता सुन नारक पशु अनकुलीनी जोग,
2: सो इस करके कहंदे ने जिहड़ा श्रोता है श्रोते नूं भी नुकसान है, ते कथन करन वाले नूं भी नुकसान है। तां ते कहंदे ने जिहड़ा ये हर बंदे नूं नुकसान ही नुकसान हुंदा इन्हां गल्लां दे विच, क्योंकि कई चीजा आ जांदियां ने, खुद बंदा माड़िया चीजा खांदा, पहलां भी आ चुक्या इशारा, दुबारा फिर कहंदे ने। हुण कई बंदे अपने पंथ विच, एक पंथ विच अपने इन्ना वधिया कथावाचक होया, इन्ना वधिया कि लोक उहनूं सुणदे ने, अज भी उहदियां कैसटां सारिया देशां चलदियां ने, हुण तां चढ़ाई करके उहनूं काफी साल हो गए, उहदियां किताबां भी ने छपिया होईआं। उह बंदा बेहद शराबी सी, जिथे जी करे पी के डिग पैंदा हुंदा सी, पर लोक हले भी सलाही जांदे ने उहनूं, पर वह बंदे का की प्रभाव पैना किसी बंदे उत्ते जिहड़ा आप ही डिग्गिया फिरदा। इस करके इत्थे सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा बंदा धार्मिक है ना, जिन्हें खास करके उपदेश करना है, वह बंदे का अपना खाना पीना बहुत ठीक होना चाहिदा। जे उहदा अपना खाना पीना माड़ा फिर संगत नूं भी गलत पासे ला सकदा है, किसी बंदे नूं गलत भी कह सकदा, वह कह सकदा कोई गल नहीं जो मर्जी खाओ पियो मौजां करो, इस तरह दुनिया नूं गलत मार्ग उत्ते पा सकदा, तो वह बंदे का माड़ा ही माड़ा असर पै सकता हर वक्त।
1: पंथ रचियो मैं धर्म हित पूजा दान न खाए,
2: महाराज कहने मैं पंथ रचिया धर्म वास्ते, धर्म नूं कमाउण लई, ना कि आपां ने पंथ बनाया भी जिथे मर्जी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जिन्ने रुपये आए खा पी छे मौजा कर लिया। कहने मैं इस करके नहीं बनाया यह, जिन्ने मर्जी जिथे निशान साहब ला लिया, जिथे जी करिया प्रकाश कर लिया, जिथे जी करे आए पैसे कट्ठे कर ले ते वो खा ले। कहने ये तो जहर खाने वाली गल है, इस करके पूजा का धान नहीं कदे खाना खालसे ने।
1: लोभ बंद मानत नहीं शुकर जो नहीं पाए,
2: तो इस करके जेड़ा बंदा बहुता ज्यादा लोभ दे विच बन्नया पिया है तो उन्हां बंदयां दी गल नहीं मननी, नहीं तो कहने शुकर आदक की जूनी विच बंदा चलिया जांदा। जेड़े बंदे लोभ दे विच पए हुए ने ना उन्हां बंदयां दे मगर ज्यादा नहीं जाना।
1: दिवस रहन गुर चरण भज कुल की कर है कार,
2: रात दिन तुसीं इक कम करना सारिआं ने सत

0: चेला होगा कोई वह अपने गुरु को समझाया करेगा जाके नहीं गुरुदेव यह गल इस तरह तुम हले बच्चे हो थोनू नहीं हले इन गलों का पता भाव हूं भी तो समझाते ही ने आके हूं भी तो कह रहे गुरु ग्रंथ साहब जा पिछौर सिंह प्यारा सिंह अर्गे उठ खड़े हुए सी हूं होर ही खड़े दसम ग्रंथ के विरुद्ध होर गल कर रहे ने यही जी तो गल है यह कहने इन्हों नहीं पता है असल तो सानू पता साडिया बुद्धियां ज्यादा कम कर दिया ने सारी मर्यादा ही पुठी करती इस करके कहने कलयुग दे विच ऐसे कर्म होणगे ते अन्न पावन खाए ते अपवित्रता वाला अन्न खाया करनगे कहने इहदे खाण नाल तां दिमाग चलदा जे ना पीए गाली नहीं चलदा है कई तां इहो कहंदे ने वी गल मैं कहा तुसीं इह शराब पीने हो कोई बंदे सी आवें शराब पीने कहिंदा आवाज नहीं निकलदी यही तो गल साफ करने वाली चीज है
1: नहन तजे काया दुखी खामे बोर च पाए
0: इस करके कहने ने कलयुग दे विच कैसा होवेगा नहन तजे काया दुखी जे नहाना छड़ देंगे क्यों नहाउंदा क्यों नहीं बस एवं शरीर जा दुखी जा ये की नहा के लैना ते जे उन्हों कहो आ रोटी खा लो आ होर चीजा खा लो कहिंदे कित्थे रोटी महाराज कहिंदे रोटियां खाण नूं तकड़े होणगे कलयुग च ओ चीजा खाई जाणगे सारियां जे कह दो इशनान कर लो फिर उत्थे डिग पिया करनगे मेरा तो शरीर नहीं ठीक है
1: प्रीत थोर खुश मत बचन उधर भरन के काज
0: कहिंदे प्रीति तो होवेगी नहीं लोकां दे विच होर की करनगे कहिंदे पेट भरन लई ना खुशामद करिया करनगे इहदे कोल सानू खाण नूं मिलदा जिथों खाण नूं मिलेगा उत्थे पैरी हाथ तक लाया करनगे गोडी हाथ लाउणगे यह बंदा बड़ा वधिया जिथों खाण नूं ना मिलिया करेगा उन्हूं गालां कढ़िया करनगे
1: नारी मिलना भोग कब ग्रह ग्रह जजिए साज
0: बस इको ही गल मन दे विच होवेगी लोकां दे मना अंदर कलयुग दे विच विशियां दी गल जे तां विशियां दी गल करो फिर तां जिथे गाउण वाले आउंदे ने आ गाने गाउण वाले गाने गाउण वालियां इस्त्रियां उथे दा बेअंत कट्ठ हुंदा ते जिथे कोई भजन पाठ दी गल होवेगी उथों लोग भज्या करनगे जां इक होर कहिंदे ने जिवें सारा दिन बंदा बस विशियां नूं ही चित वी जाया करे कलयुग दे विच वी कदों रात पवे कदों विशियां च परिवर्त होईए कहिंदे जिहड़े लोग कवि लोग होणगे उन्हां दी जिहड़ी चंगी कविता होगी कलयुग दे विच लोग चंगी कविता नूं सुणिया नहीं करनगे कहणगे एवें फालतू गल्लां करदा जे ओही कवि किसी इस्त्री की कविता सुना देवे विशियां बकारां दी भाव माड़े गाने जिवें अजकल चलते ने फलाना गा रहा उत्थे लोग सुन जाया करनगे माड़े गाने ते जिथे कोई कविशरी हुंदी है गुरु घर की गल हुंदी है जिथे कोई ढाडी सिंह आउंदे ने इह कहिंदे एवें जकड़ियां मारदे फालतू ये झूठियां गल्लां करदे हैं ये उन्हां नूं नहीं सुणनगे लोग कि महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फलाने थां फलाना गा रहा फलाने थां फलाना गा रहा इहनूं दो वी 50 लख रुपया करोड़ रुपया एक रात दे गाउण दा करोड़ रुपया लैंदे लोग जे कोई लोग बाणी पढ़न वाला होवेगा कोई कथा वाला कोई कीर्तन वाला भाई जी 151 बढ़िया उन्हूं 151 251 उत्थे नाल एक रुपया जरूर वो जे थोड़े गाउण वाले उन्हूं क्यों नहीं कहिंदे 5 लख एक रुपया लैणा उन्हूं नहीं कहिंदे एक रुपये नाल क्योंकि उहदा निरादर हुंदा है इस करके जिहड़े गाने गाउण वाले होणगे उन्हां नूं लोग सत्कार दिया करनगे कहिंदा मेरे समय च जिहड़े लोग चंगे होणगे उन्हां नूं लोग निंदिया करनगे इस करके कलयुग अपनी रीति दस रहा महाराज नूं कि मेरे समय च की वर्तारा वरतेगा आओ रसना नूं करिए पवित्र।